जेता ना दोबी बेजों चे योसा ना यू लुशी रेन ला फर्जी चें जो दू जुन्यों जो ताजु जुगा ताओ रान ताओ सा गवा में ची संडा शी यो ता या चुको ना बाचो तेरे इंक चाशी जो तुन चे निमों दर ना जु बेजों चे शू यों चे कौंपला दोबी लजी शी सें दू